0: संपूर्ण परमेश्वर
1: आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर सिमरंत संत सिमरंत

तासो टूटी क्यों बने जाके जी परा सो क्यों विसरे जे गाल न पाने सो क्यों विसरे जे किया जाने सो क्यों विसरे।

सलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच, सलल निवास जैसे मीर की ना कटे रुच, दीपक प्रदास कटे प्रीत ना पतंग की, उसूस पास जैसे त्रिपत ना मधुप को उड़ते आकाश, आस कटे ना विहंग की कटाकन को।

तो तुम पे लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा

तुर बिंदु जा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना सब सब जी पास सब किता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जिदी वडियाई ता तेरी वडियाई।

जो तो करे करावे स्वामी हा मसलत परवा चरण शरण हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आला दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत मरायण तन गोपाल गुण साखी।

मध्य होत साधु तुरे आवण जानू रेख पाई जन मरण के मिटे वसूरे गुर नारायण दुरु गुर सच्चा सिदिन हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानस सब बनिहार हर गुण गाओ।

गुरु की साथ संगत भाव साहिब गुरु रामदास पातशाह दे उच्चारण कीती हुई शब्द दे रूप विच पड़ताल हर गुण गावो जगदीश राग कांडा और शब्द धन साहिब से गुरु रामदास पातशाह जी।

0: कला खुद खुदाने को बस आप ही है।
1: दसम पिता दी ए गल सुन के गुरु तेग बहादुर साहिब पातशाह ने अपनी कुर्बानी दिती ते फिर क्या गए ए सारे हिंदुस्तान वास्ते साहबा ने अपनी कुर्बानी दिती। तिलक जंजू राखा प्रवतांका कीनो बड़ो कलू में साका ते फिर बड़ा सुंदर करके लिखिया गया है।

जो सात संगत जी अति अप्रचलित राग जिसनों गुनी सज्जन चारू पेशी कहते हैं, अप्रचलित राग है, लेकिन आप संगतां दी कृपा नाल गुरु सच्चे पातशाह दी रहमत नाल आप दे दास ने इसनु गाया है। बड़ा ही अप्रचलित राग है, बहुत ही कोमल राग है, मन नूं पौंदा है, मन नूं चंगा लगदा है। एक बार इसका अंतरा स्थाई श्रवण करो, फिर दूसरा शब्द जी।

करती है। ऐ मनुख तू चेते कर, माता के उदर में प्रतिपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये, एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर, शेर तले पांव ऊपरे, वसंदो कोहतड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये, उदरे जिसके दाए। ओ समा चेते कर, जदों तू पुठा लटकिया होया सी, ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सै, जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी, उस वेले तू अरदास करदा सै, हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ, मैं तेरा सिमरन करांगा, तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भुल गया ओ वेला, तू कहा सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा, सत संगत बह के हर नाम दिया सा, तू भूल गए वह दे, पै गए हनेरे, ओए सुन मन गाफल, पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है।

0: तेरे राग है, तेरे राग है।
1: जो भीख मंगावे तो क्या कट जाई, तू हर पज मन मेरे पद निर्वाण। बहर न होए तेरा आवन जान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जीओ, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन बाणी अंदर समुची मनुखता दी जीवन कल्याण दी गल कीती गई है। गुरमत इस ख्याल नाल सहमत नहीं कि संसार विच दो चार बंदे जड़े ने वो उच्चे सुचे पवित्र जीवन वाले हो जान ते बाकी दी दुनिया उसे तरह कीड़िया मकौड़िया वांग जमदी मरदी रहे। गुरमत इस आशे नूं प्रगट करदी है कि सारा संसार जड़ा है इस दे उधार दा बंदोबस्त वाहिगुरु अकाल पुरख ने कीता होया है। इसे आशे दी व्याख्या बाणी विच कीती गई है। बड़े चिर तो मनुख दे सामने यह समस्या है कि यह जड़ी दुनिया दी दौलत है, संसार दी माया है, इहदे नाल मैं किवें वरतना। धर्मी तो लोग आम तौर ते गल कहिंदे ने कि जिन्ना चिर इहनूं छड्डोगे नहीं उन्ना चिर रब दे नाल ते जुड़ ही नहीं सकदे। जदों गुरमत नूं चंगी तरह समझने आ तां इह गल साडे पल्ले पैंदी है कि गुरु साहिब ने इस माया नूं त्यागण दा कोई उपदेश नहीं दिता। गरीबी है या अमीरी, थोड़ी माया या बहुती, इस गल दा सवाल नहीं है। सवाल यह है कि माया दे हुंदिया होया उस वाहिगुरु अकाल पुरख नाल अपने चित नूं जोड़ना। भाई साहब भाई गुरदास कहिंदे ने गुरसिख जोगी जागदे माया अंदर करन उदासी। आंदे ने गुरसिख योगी हन, ऐसे योगी के माया विच रहिंदे होए भी ओ चितन ने जागदे होए ने समझदे ने कि इस माया ने साडे नाल नहीं जाना। वो कहिंदे ने कि यह माया परमात्मा ने बनाई है, माया तो उसने संसार बनाया है, इसलिए किते भी मनुख चला जाए मनुख दा शरीर मनुख दी अपनी होंद भी माया नाल है, माया दा पिछा नहीं छड़दी, माया तो बिना यह संसार हो नहीं सकदा। इस करके गुरु साहिब ने कहा इनू नफरत करन दा कोई मतलब नहीं, यह परमात्मा ने बनाई है। गुरु अमरदास पातशाह ने श्री राग विच एक बचन कीता है, सतगुरु कहिंदे ने माया मोह मेरा प्रभ कीना आपे भरम भुलाए। बाणी नूं जदों ध्यान नाल पढ़ीए साडियां कई समस्या हल हो जांदियां, पर असीं बाणी वल ध्यान नहीं दिंदे, बंदियां वल ध्यान दिंदे, मुश्किल साडी आए। कहिंदे फलाणा बाबा कह गया, बस आपा कह जांदा सानूं कि गुरु ग्रंथ साहिब गुरु तुहाडे कोल मौजूद है, उस नाल गल करके पुछ के वेखो कि गुरु साहिब की कहिंदे आ। बंदा गलत हो सकदा है, पर असीं बंदे दे मगर लगण वास्ते तैयार हो जांदे आ। साहिब कहिंदे ने माया मोह मेरा प्रभ कीना आपे भरम भुलाए। मनमुख कर्म करें नहीं बूझें बिरथा जन्म गवाए। गुरबाणी इस जग में चानण कर्म वसै मन आए। गुरबाणी की रोशनी नाल यह गल साडी समझ विच आ जाएगी, पता लग जाएगा कि असां संसार दे अंदर इस माया विच रहिंदे आं किस तरह उस मालक नाल अपनी सांझ पाउणी है। इसे करके भगत जी का बचन जो कीर्तन द्वारा सरवण कीता है, कहिंदे ने तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहर ना होए तेरा आवण जान। कहिंदे ने हे मेरे मना तू उस वाहगुरु अकाल पुरख नू चेते कर जो आप निर्वाण पद दा मालक है ते तैनू उस अवस्था विच ले जाएगा, तेरा जमन मरण कटिया जाएगा। ए केंद्री ख्याल है शब्द दा। ते कहिंदे ने भी किसे कीमत उत्ते भी तू परमात्मा नू नहीं छड़ना। जिस वेले त्रिलोचन ने नामदेव नू कहा मैं सुनिया तू भगत है, कादा भगत है, तू ते हर वेले कपड़िया च लगा रहिना, कदी धोना कदे छापदा कदे कुछ करदा। वो कहन लगा ठीक है मैं काम करदा हां, लेकिन भाई काम करदिया होया मैं उस मालक नू चेते करदा रहिना, भुलदा नहीं, मैं उन्हू याद करदा रहिना वा। हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। मैं चंगे तो चंगा कपड़ा भी हाथ विच लैके कदे ए नहीं सोचदा कि कपड़ा ही सब कुछ है। मैं उस वाहेगुरु अकाल पुरख तो सदके जाना भी जिसने ए सुंदर कपड़ा बनाउण दी विध बनाई है। मैं सुंदरता देख के भी उन्हू याद कर लैना, मैं मुसीबता देख के भी उन्हू याद कर लैना। हर हालत विच उन्हू याद करन दी गल मैनू विसरदी नहीं। इसे करके कहिंदे ने जो राज देहें तां कौन बढ़ाई, जो भीख मंगावे तां क्या घट जाई। कहिंदे ने भिख्या मंगाएगा तां भी तैनू चेते करदा रहना, ते ये याद राज दे देगा मैं तां भी तैनू चेते करदा रहना। ये नहीं कि मैं राज दी वडियाई विच पै जाणा ते समझना भी सब कुछ राज ही है, ते भिख्या मंगावे ते मैं तैनू गालां कढ़न लग पावां भी तूं कहदा रब मैनू दित्ता कख नहीं। वो कहिंदे नहीं, किसे हालत विच भी मैनू रखे, मैं मेरा कम है तेनू चेते रखना, तेनू याद करना। इतिहास की एक वार्ता है सतगुरु गुरु हर राय साहब दे इतिहास की। उन्होंने एक सिख होया, बड़ा गरीब जिहा सिख सी, कृति किसान, भाई पूंगर करके इतिहास ने उहदा नां दिता है। खेती करदा मिहनत, पर गुरु साहब के दसे उपदेश के मुताबिक अमृत वेले उठदा, नाम जपदा, बाणी पढ़दा, फिर अपनी किरत विच लग जांदा। कोई अतिथि आवे, आया गया लोड़वंद, कोई जग्यासू आवे, वह सेवा करदा। ते एक चलदा फिरदा साधु भी आ गया, बड़ी सेवा कीती उसने, बड़ा प्यार कीता। ते उस साधु दे मन विच ख्याल आया भी इस बंदे कोल दौलत नहीं है, पर प्यार, सेवा, हमदर्दी, मनुखता दा सब तो उच्चा गुण जो किसी दौलत नाल प्राप्त नहीं हुंदा, इस मनुख दे कोल है। ते मेरे कोल पारस है जो सोना बना सकदा धात नूं, ते इस नूं पारस दे देवां, इहदे कोल अमीरी दौलत आ जाएगी, ते होर भी वध सेवा कर सकेगा, इहदी गुरबत दूर हो जाएगी। खबरे इसे वास्ते ही सेवा करदा होएगा कि कितों कुछ लभ जाए। उसने पेशकश कीती, उस सिख नूं कहा भी ये पारस तूं लै लै। कहण लगा मेरे किसे काम नहीं, मैनू वाहेगुरु अकाल पुरख ने बहुत कुछ दिता है, गुरु दे उपदेश दे मुताबिक जिंदगी सबर सिदक नाल गुजर रही है, सेवा विच नाम जपण विच कोई ढिल नहीं है, दसा नवां दी किरत करदा हां। वो कहण लगा नहीं, तेरा गुजारा तंग है, मुश्किल नाल रोटी चलती है। कहण लगा चंगा फिर जे तुसी महापुरुष हो, इसी गल ते आए हो, उन्हें कई मारी धरती ते ते टोआ कढ दिता छोटा जिहा, आखण लगा इत्थे रख दिओ, ते मिट्टी पाती। समा बीत गया, साल दो साल लंघ गए, ते साधु दे मन विच ख्याल आया भी चल के देखा ते सही भी उस बंदे नूं पारस दिता सी ते उत्थे तां महल खड़े होए होणगे, नौकर चाकर होणगे सेवा करन लई। जिस वेले आया ते उन्हें वेख्या भी उह ते उसे तरह चल रहा कम, उन्हें पुछया आण के, आखण लगा मेरा पारस। सिख कहण लगा मैनू तो याद भी नहीं, वो तो जिथे दबिया हो दबिया सी उथे ही होएगा, तू वरत्या नहीं। कहण लगा महापुरशो मैं तुहानू पहलो भी कहा सी कि मैनू इस वस्तु की जरूरत कोई नहीं, मेरी जिंदगी गुरु पातशाह की सिख्या के मुताबिक बहुत वधिया गुजर रही है, ते मैं किसे लालसा नू लैके कोई सेवा धर्म कर्म नहीं करदा। बड़ा हैरान होया, आखण लगा मैनू अपने सतगुरु दे कोल लैके चलो। गुरु हर राय साहब दी चरण शरण विच उस सिख ने लिआंदा ते गुरदेव ने समझाया, आखण लगे देखो तुसी बंदगी दा रस्ता अख्तियार करके भी साधु बन के भी ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਸ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਗੁਆਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬੱਝਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਿਰਾ ਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਕ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਚਾਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਹੁ ਕਰ ਪਕਰੀ ਨਾ ਆਈ ਹਾਥ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਆਗ ਦਈ ਤਬ ਉਹ ਚਰਣੀ ਆਏ ਪਈ, ਸੁਣ ਸੰਤੋ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਗਤ ਨਹੀਂ ਕਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਤ ਉਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਾਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਐਸੀ ਯੁਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਿਤਨਾ ਆਵੇ, ਘੱਟ ਵੱਧ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਮੀਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁੰਝੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਇਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ

पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी तू उन्हां नूं अपना गुरु बना। पर एक गल है कबीर, तू है जुलाया नीवी जात दा ते स्वामी जी उची जात दे। स्वामी जी ते जात पात नहीं देख दे, पर उन्हां दे चेलिया ने तैनू लाग नहीं लगन देना। ता कबीर साहब ने कहा, फिर मैं की करा।

होए बिरकत बनारसी रहंदा रामानंद गुसाई अमृत वेले उठ के जांदा गंगा नावन ताई ओ स्वामी रामानंद अमृत वेले उठ के गंगा ते इशनान करन जांदे ने क्योंकि रब दे प्यारे रात सौंके नहीं बतांदे।

अपना परना मोढ़े ते मारिया। गंगा घाट इशनान करन वास्ते तुर पए ने जदू स्वामी रामानंद गंगा घाट पहुंचे

और एक दिन इशनान करारे ने ठाकुर नूं कपड़े पवाए सिर ते मुकट रखिया। अचानक ख्याल आया मना सिर ते मुकट पा दिता है हार पाण दा ते ख्याल ही नहीं रहा। हार छोटा है मुकट तू पै नहीं सकदा मुकट लावां तां बेअदबी हुंदी है। जिवें असी किसे दे गल हार पाना होवे हार छोटा होवे पग ला के गल विच हार नहीं पाईदा। इसे तरह स्वामी जी सोची पै गए हार छोटा है मुकट तू पै नहीं सकदा जे हार ना पावा पूजा पूरी नहीं होंदी। इन्ने नू कन्ना विच एक आवाज पई स्वामी जी हार छोटा है गंढ खोल के हार दी हार गल विच पा के फिर गंढ बन दे। बिरती खुल गई स्वामी जी बाहर आए बुआ खोलिया बार की देखते ने भगत कबीर साहब बैठे। स्वामी जी कहन लगे ओए तू कौन है जिन्ने मेरे मन की गल जान ली। ते कबीर साहब कहंदे ने स्वामी जी मैं आप दा सेवक कबीर हां अमृत वेले गंगा दिया पौड़िया ते सुता सा ता तुसी कहा सी उठ राम के राम को ओदू दा आप दा सेवक बन गया। ते स्वामी रामानंद दिया अखां विच अथरू आ गए मन पार आया उन्हां कबीर नूं बाहों फड़ के अपने गल नाल लगा लिया ते नाले कहंदे ने ओए कबीर तू हुण सेवक किथे तू ते मेरे तू भी अगे लंघ गए। जिन्हें मन दी गल जान ली ओ सेवक किथे और सचमुच राम कबीरे भेद ना पाई। ए अमृत वेले जागण दा फल के कबीर विच ते राम विच उस वाहिगुरु विच।

अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोहिन चंदन सुगंध ग्रह सोहिन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे।

आते हैं ये सब मतलब के झगड़े हैं। ब्राह्मण को गरूरे कौम ने इतना डुबोया है कि मैं वड्डा वा, उसकी जनीयत पे उसका मुकद्दर रोया है। हुकूमत के तशद्दुद का जमाना खत्म करना है, हकीकत कह रही है ये अफसाना खत्म करना है। उठो, शहादत के लिए उन सरफरोशों की जरूरत है कि जिनके खून की एक बूंद

फिर हिम्मत आई, फिर डिसिप्लिन आया, फिर सहबी आई, अमृत दी दात बख्शी गरीब नवाज पातशाह ने, ते फिर भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, गुरु कृपा ने जातां दा मौका दित्तियां। ध्यान दिओ जे, ध्यान दिओ जे, एक जट लिया, एक खत्री लिया, एक चीवर लिया, एक चींबा लिया, एक नाई लिया, ते सारयां नूं इक्को बाटे विच पलाया।

एक अख दे पलक विच कुछ दा कुछ हो जाता है। मनुख केडियां पक्कियां बनी बैठा है, समान सौ बरस का पल की खबर नहीं। इसे लिए धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी कह रही है, हर जपदिया खिन ढिल ना कीजे मेरी जिंदड़ी ए, मत के जापे शाह आवे के ना आवे राम। हर जपदिया ढिल ना कर, इसे लिए महापुरख क्या करते सी भाई, अमृत वेले जाग के इशनान करके पहला नितनेम कर लिया करो, पहला गुरु दा कम कर लै। पता नहीं आउन वाले श्वास जिन्हां दी तू उड़ीक विच है, ओ आउनगे के ना आउनगे। इसलिए संसार ता ऐसा है, इथे दुनिया मतलब दी है, इथे झूठ दा पसार है। तू नेहो लाई बैठे तेनू आपे ही सोझी हो जावेगी के जिन्हां लई तू की कुछ नहीं कीता, पर केड़ा भाई तेरा बनेगा, किसे ने तेरा नहीं बनना। इसलिए असी एक दम दे मालक हां जो हजूर बख्श

थे ता तेरा जीवन अधूरा है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बख्शिश कर रहे हैं, बिन संगत ऐसे समझो जैसे पशु ढोर। आख्या जिन्हां ने मनुष्या जन्म प्राप्त करके सत संगत नहीं कीती, नितनेम नहीं कीता, गुरु वाले नहीं बने, उन्हां नूं जीवंदियां पशुआं विच नहीं, उन्हां नूं मोया होया पशुआं विच गिणिया। पशु ढोर, ढोर कहिंदे उन मरे होए पशु नूं। आख्या ऐ मनुख, पशु ने आके कितने काज सवारे, काश खा के अमृत रूपी दुध देंदा रहा, ते जदों मर गया तां उस दियां हड्डियां कम आईयां, चबड़े दे जोड़े बने, होर कई समान बने, उस दे मास दी कई जानवरां दी खुराक बनिया, पर तू इथे आके केड़ा कम कीता, जे सिमरन नहीं कीता, नाम नहीं जपिया, गुरु के निर्मल पाओ विच नहीं रहा, ता तू मरे हुए पशु नालों ही माड़ा है। इसलिए बिन सत संगत दे।

ये पल दी खबर नहीं, अहंकार कर रहे हैं। इसे लिए हजूर कह दिया ना, तन जोबन का गर्भ ना कीजे, कागद ज्यों गल जाएगा। पता नहीं अगला पल के हो जा आ रहा है। तन गुरु नानक पातशाह संसार नू तारदे होए एक नगर दे बाहर जा बैठे, वेख्या के सारे लोग बड़े खुशियां मना रहे हैं, ते झट बाद वेख्या के रोना पिटना पै गया। इथे मर्दानिया आ हुने तां खुशियां मना रहे सन, ते हुण वैन पै रहे हैं जाके पता करके आ। मर्दाना जदों गया पता करके आया तां आख्या गरीब नवाज सच्चे पातशाह, एक सेठ दे घर लड़का होया सी। बड़ी मुद्दत दे बाद औलाद होण दे कारण सारा नगर बड़ियां खुशियां मना रहा सी, पर अकाल पुरख वाहिगुरु दी नेत नाल ए लड़का शरीर छड़ गया ते उहदे विंजोग विच हुण रो रहे हन। मर्दानिया ए संसार है ही दुख सुख दा एक नगर है, इत्थे पता नहीं लगदा। जिस तरह समुद्र विच बेड़ा जा रहा है, पता नहीं किथे तूफान आ जाना है, किथे शलां उठ पैनिया हन, किथे शांत हो जाना है। ये साडा जीवन भी ऐसा है, पर प्यारी साध संगत जो गुरु की बाणी सानू बख्शिश कर दी है कि भाई राज भाग दुनिया दे धन दौलत विच सुख नहीं हन, सुख तां हरि दे सिमरन विच है। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। जिन्हें हरि दा सिमरन कीता सुखी तां ओ हन। कितने राजे महाराजे चक्रवर्ती पातशाह संसार तो चले गए हन, ते भाई नाम किन्हां दा रह गया जिन्हां ने हरि सिमरन कीता। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज क्या करदे सन कि इस धरती ते इतने राजे महाराजे वजीर हो चुके हन, जदों असी एक कदम रखदे हां तां एक राजे दे सिर ते दूसरा वजीर दे सिर ते रखदे हां। इतने राजे महाराजे चक्रवर्ती पातशाह हो चुके हन, पर अज नाम किन्हां दा अमर है जिन्हां ने जपिया है श्री वाहिगुरु। तो इसलिए हजूर कहंदे हन भाई पता नहीं अगला पल किहो जिहा आवेगा, इसलिए जप जप के इना श्वासा नूं सफल कर लै। तेरा संसार ते आउणा भी ते संसार तो जाना भी धनता दे योग।

शुभ कर्म ते कबहु न डरो। भला कर्म केड़ा है? ना डरो अरस्यों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अर सिख हो अपने ही मन को, ए लालच हो गुण तो उचरो। जब आप की औज निदान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। शुभ कर्म, एक दफा का जिक्र है, आनंदपुर साहिब दीवान सजिया होया, साहिब सच्चे पातशाह सशोभित हैं, संगतां विच रब्बी कीर्तन हो रहा है, संगतां आनंद मान रही हैं। एक माता जो संगतां दे विच रोज आने वाली है, पर अज आई पिछे बैठ गई, पर रो रही, रोण दी आवाज आ रही उसकी। दीवान दी समाप्ति हुई, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज निकट बैठे सिंह नूं कहण लगे, जाओ और माता नूं पुछो, ए गुरु नानक दा घर है, इत्थों खुशियां मिलदियां ने, पुछ के आओ जां बुला के लैके आओ। रोज आउण वाले ने ते रोज नजदीक आके मत्था टेक के बैठदे ने, अज पिछे बैठ रहे ने ते रो रहे ने। बुलाया, सत्कारयोग माता जी आए। साहब सच्चे पातशाह कहण लगे, माता जी की गल है, रो क्यों रहे हो? यह गुरु नानक का घर बख्शां का घर है, इतों हर इच्छा पूर्ण होंदी है, की गल है? ये माता कहण लगी, सच्चे पातशाह मेरा पुत्र बीमार है, कई दिन हो गया उसनू बुखार है, बुखार उतर रहा नहीं, उतर नहीं रहा, कमजोरी इतनी हो गई है, चल फिर नहीं सकता, तुर भी नहीं सकता, मंजी तो नहीं उठ रहा। अच्छा, गुरु नानक दे घर आ गई है, गुरु नानक मेहर करनगे, राजी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ते माता कहण लगी, सच्चे पातशाह रोना इस गल दा नहीं कि उसनू बुखार है, ध्यान देना, मेरे पति जंग विच शहीद हो गए, मैं रोई नहीं, मेरा वड्डा पुत्र जंग विच शहीद हो गया, मैनू रोना नहीं आया, उस तो छोटा जंग विच शहीद हो गया, मैनू रोना नहीं आया, मेरी अखां विचों हंझू नहीं आए, ये तीसरा पुत्र बुखार है, कमजोरी आ गई है, कई दिनों तो बुखार है, सोचा सी हट जाएगा, पर इतनी कमजोरी, बहुत कमजोरी हो गई है, ते मैं सोचती हां वो गुरु वाला नहीं बनिया, किते इसे तरह इस संसार तो ना चले जाए, अमृत नहीं छकिया उसने, प्यार नाखु सतनाम श्री वाह, धन है ओ मां, शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो। भला कर्म सोच रही है, भला सोच रही है, चंगी सोच है उसकी, वो कहिंदे कहिंदी है, गुरु वाला बनन तो बिना ही ना इस संसार तो कूच कर जाए, बुखार दी इस करके चिंता है। तो सात संगत जी, गुरु ने असीसां दित्तियां, तसली दित्ती, ये माता कर गई, ते पुत्र उठ के बैठा सी। माता जी किधर चले गए सी? इत्थे गुरु साहब आए सन, मैनू आप जल छका के गए हैं, मैं उदों दा ठीक हां। उस तो थोड़े दिनों बाद ही इस माता ने इस बच्चे नू गुरु साहब को ले जाके अमृत पान कराया। सरसा दे कंडे जदों जंग होई ना जी, साहबजादियां दी रखिया करदा होया ये शहीद होया, इसका पुराना नां प्रतापा सी, ते अमृत छक के प्रताप सिंह बने, प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाह। तन है वो मां जो अज दे समय विच भी ये सोचे कि मेरे बच्चे गुरु वाले बन, क्योंकि गुरबिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवै, गुरबिन सुरत न शुद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावै, कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुरबिन ज्ञान न होए, जे सौ चंदा उगवै सूर चढ़े हजार, एते चानण होंदिया गुरबिन घोर अंधार। तो ये सोचनी, चंगी सोचनी है,
ਭਲਾ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇਹ ਸੇਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ, ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉਚਰੋ।

ना पीजे बार बैठे हैं सुन, ना पीजे रूपी माली रंग, ना पीजे तीर्थ पविए नंग, ना पीजे पेड़ मरे पिड़ सूर, कोई बड़ा सुरमा होए अपने आप नू खत्म कर देवे रण विच, रब नहीं पीजदा। ना पीजे केते होवे तूड़, कोई अपने आप नू तूड़ भी बना ले, पर आखिर विच गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज सारंग दी वार विच कहंदे हन, लेखा लिखिए मन के पाए, जे तेरा मन ही नहीं होया